Kanaitasana. Anger is the feeling that makes your mouth work faster than your mind. ये गुस्सा है क्या? आपके मुंह को हरकत में ले आता है, आपकी ज़बान को, और आपके माइंड से भी आगे चली जाती है, आपके मन से आगे चली जाती है ये कड़वी ज़बान. साना, thank you. और good morning to all the listeners, Parveen ji. New week, last month, day of this month. One line. चलते चलते मेरे ये गीत याद रख. Okay. ये चलते चलते रूपल का होता है ये तरीका फरमाइश करने का. यानी किसी को ऐसे नहीं फील हो कि मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं याद कर रही हूँ. ओके रूपल, आज ये भी आपकी याद पूरी करते हैं. अमीर अली राणा क्या कहते हैं, विश ऑल द बेमिसाल अंदाज फैमिली गुड मॉर्निंग. और जब जिंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला जिंदगी सब्र के सिवा और कुछ है ही नहीं. कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई नाराज हो गया सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई सब्र, और जो मांगा वो ना मिला तो सब्र. समी क्या बात है अमीर अली राणा, ये तो वाकई बड़ी बहुत बड़ी हकीकत आपने बयान कर दी. हर बात पर कोई आपको चलो सब्र करो, चलो सब्र करो, कितना सब्र करें. वो कहते हैं कि क्या ये सारी जिंदगी सब्र ही है? नहीं.

0: इतना हसीन है मौसम, तो फिर सबर सबर करने की बात कर रहे थे हम। और भरत गंगाराम कहते हैं शुभकामनाएं वंदनीय प्रवीण जी, आपका स्वागत है फ्रॉम लंदन, बहुत मेहरबानी। रंजन विनोद भी लंदन में है, आप सबको कह रही हैं शुभकामनाएं। और शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका कहती हैं कि मैनी वर्ल्ड लीडर्स लाइक किम जोंग उन, आप जानते हैं समय नॉर्थ कोरिया के हैं किम जोंग उन, बड़ी हरकतें इनकी अजीब होती हैं। एंड पुटिन, बोथ ऑफ देम ट्रेवल विद देयर ओन पर्सनल टॉयलेट टू स्टॉप, अच्छा फ्रॉम फॉलिंग इन, अच्छा ओके, बहुत शुक्रिया आपका शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। चंद्रिका वासंत गोसाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट सॉन्ग। प्यार अली भाटिया क्या कहते हैं, उन्होंने भी भेजा है मैसेज, चलिए।
1: कितना हसी है मौसम, ये गाना फिल्म आजाद का है, 1955 की मूवी है, जिसको लता मंगेशकर और चित्रकार ने गाया है, और जिसको राजेंद्र किशन ने लिखा है, और जिसकी धुन सी रामचंद्रन ने बना है। ये गाना उसने खुद ने भी गाया था, तो गाना बहुत अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: और मुझे भी एक गाना अच्छा लगता है जो कुमार सानू की आवाज़ में है, समझे, एक आधा मैंने आपको कभी पहले भी सुनाए हैं कुमार सानू के गाने, बहुत अच्छे गा कर गए, तो एक आगे भी आएगा, आप इंतज़ार करें, लेकिन पहले जो रूपल कहती हैं वो करना पड़ेगा।

0: और अब चलते दर्शन सिंह लोटे, बहुत शुक्रिया सोनल मोदा, बहुत मेहरबानी जयश फ्रॉम वोई, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, बहुत अच्छा लगा गाना। और शबीर अहमद फ्रॉम लंदन जुड़ चुके हैं, शोभना और दिनेश बेमिसाल अंदाज, अनलॉकिंग द बेस्ट इन म्यूजिक दैट एक्सीड्स आर एक्सपेक्टेशंस, फीलिंग पैराडाइज ऑन अर्थ। क्या बात है शोभना और दिनेश, बहुत ही अच्छा लगता है इनके मैसेजेस, आप सबके मैसेजेस पढ़ने। अब सलमा ने भी अपना भेज दिया है, सुनते हैं क्या कहा है।
1: आज की कुछ अच्छी बात सुनिए।

0: जो चीज तुम्हारे हक में होती है वो तुम तक जरूर पहुंचती है, चाहे तुम उसके लिए कितना भी इंतजार क्यों ना करो। सब कुछ सही वक्त पर होता है। शुक्रिया सुबह का प्यार सलाम सौमा आमद के सोमो।
1: जो भी अच्छा है ना आपके लिए वो आ जाएगा, हो जाएगा, कोई आपकी तारीफ करे वो हो जाएगा, पर वक्त पर। बहुत खूब। और समय दुनिया का देखें सबसे बड़ा चीनी यानी शुगर इंपोर्टर भारत है, पर गुज़िश्ता 2 महीनों से चीनी की कीमत बढ़ रही थी तो 10 लाख टन विदेश से मंगवा ली, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों में मिठाइयाँ बनेंगी तो उसकी कमी ना हो। वैसे इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे सेकंड सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, लेकिन इस बार शक्कर की पैदावार बहुत कम हुई, क्योंकि कहते हैं कि बारिशें नहीं आई वक्त पर, तो इस वजह से। अच्छी बात है, लेकिन जो खबर मैंने देनी थी, यूनाइटेड किंगडम में बिकने वाले समय ने एक ड्रिंक फांटा जो है, इसकी एक बोतल में 63 कैलोरीज होती हैं, यूके में जो बिकता है ये। यही ड्रिंक इंडिया में बिकती है तो 3 गुना ज्यादा शक्कर। ये आपको पता था? सेम ड्रिंक बनाने वाले वही हैं, लेकिन इंडिया में देखें कितनी ज्यादा कैलोरीज डाल दी हैं, और यूके में, क्योंकि वहां क्यों कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स लगता है, इसलिए चीनी कम है यूनाइटेड किंगडम में, और कोल्ड ड्रिंक टैक्स इंडिया में नहीं होता, इसलिए इतनी ज़्यादा बेचकर वो ज़्यादा कीमती भी फरोख्त करते हैं, सेल करते हैं।

0: और अब क्या है कि एक सवाल भी आपके लिए, लेकिन कामिनी ने जो लिखा है, वेल डन कामिनी, जो बात आपने कही है, आपने कहा दिस इज ट्रू, इवन बिस्किट्स जैसे कि डाइजेस्टिव हुए, कहते हैं उन वो यूनाइटेड किंगडम में बिकते हैं तो वहाँ कम शक्कर होती है. आई हैव नोटिस दैट इन इंडिया एवरीथिंग हैज मोर शुगर, इवन हेल्दी सोया मिल्क टेस्ट स्वीट, इट शुडंट. कामिनी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, दैट इज व्हाई इंडिया इज बिकमिंग अ डायबिटीज कैपिटल. बहुत खूब. और समय ऐसी आपको मिले तो ज़रूर कीजिएगा. और यहाँ पर कहा है कि देर इज़ अ कंट्री वेयर 83% ऑफ लॉस्ट फोन्स, अगर आपका मोबाइल गुम गया तो 83% चांसेस हैं आपको मिल जाएगा, और वॉलेट आपकी गुम गई है ना तो 65% ऑफ चांसेस दैट इट विल बी रिटर्न्ड. Because respect for others is taught from childhood. ये कौन सा मुल्क है? 07011061061, जहां अगर आपका फोन खो जाता है या आपकी वॉलेट पैसों से भरी, खैर देखें आपने कि फोन तो चलो 83% 83% ऑफ लॉस्ट फोन्स आर रिटर्न्ड, 65% ऑफ वॉलेट्स आर रिटर्न्ड. आपने देखा पैसे की ताकत क्या है. खैर विच कंट्री, जहां पर आपको उसूल बचपन में ही सिखाए जाते हैं, ये कौन सा मुल्क है, क्योंकि ये शमीम ने भेजी है इंफॉर्मेशन. तो समझ मुल्क का नाम 07011061061.
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

ये बात हो गई, अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से मुल्क में अगर आपका खो जाता है वॉलेट या फोन तो आपको मिल भी जाएगा। कामिनी, वेल डन, यू आर द फर्स्ट कॉलर टू टेल मी कि वो कौन सा मुल्क है। कामिनी, ब्रिलियंट। साथ शब्बीर अहमद, दूसरे लिसनर टू गिव मी द राइट आंसर। जयश्री, बिल्कुल सही जवाब कि बचपन से वहाँ इनको उसूलों की जो दी जाती है ना मालूमात, बहुत ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में। सो आपने दिया है जो सही जवाब।

0: और आरफा फ्रॉम मंगाटा रुंगाई कहती हैं, क्या बात है, आज तो यादों के समंदर में बह रहे हैं। कैसे? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, कहती जब हम जवान हो रहे थे तो कितने जवानों ने ये गाना गाया था, हमारे सामने वाली की, मेरे सामने वाली खिड़की, समझ, बहुत पसंद किया गया था, बड़ा पॉपुलर था ये गाना। आपने कहा है कि आपके लिसनर्स जो इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपको बताऊं, कहते हमारा होटल हुआ करता था उंगाटा रुंगाई में, वहाँ चाय पीने जो भी आते, जो भी कस्टमर्स आते, वो कभी अपना मोबाइल अगर भूल जाते तो उनको मिल जाता, उनको यकीन था कि इस होटल से किसी का मोबाइल नहीं खोएगा। वाह क्या बात है। जयश्री के बाद सोनल मोदा, आपने करेक्ट आंसर दिया है, और नीला शेत, वेल डन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चंद्रिका वासंत गोसाई, आपने भी मैसेज किया है, क्या कहा है, आपकी आवाज़ सुन लेते हैं।
1: जी आज का कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, काम की ऊर्जा मिल जाती है, लड्डू बना लिए आपके लिए भेजे हैं प्रवीण जी, नहीं तो घर पे आ जाना खाने के लिए। थैंक यू वेरी मच चंद्रिका वसंत गोसाई।
0: अब देखे ना, वो कह रही है मेरे घर आ जाओ, दरवाजा खटकाओ और पूछो, लड्डू हैं हमारे लिए। पर थैंक यू ऑल द सेम चंद्रिका। और कृष्ण सरोवे ने कहा, ये जो मुल्क है ना, दुबई है। नहीं, दुबई आंसर नहीं है, जहां आपको आपकी वॉलेट भी मिल जाए, आपका मोबाइल भी लौटा दे कोई ना कोई।
2: No one plays more of the beats you dance to but East FM. Kenya's premier Asian mix. East FM. Kenya's premier Asian mix. Let's be honest, how many times have you used mobile money already today? Exactly. Maybe you've paid for breakfast, sent money to mum, or paid for shopping. These days, life moves fast, and so does our money. That's why you need a mobile money service that's secure, affordable, and reliable. That's Airtel Money. So you can move money and worry less. This week on Breakfast with Rehmat and Jameel, we want to hear your story. What's one everyday situation where you simply can't do without mobile money? And what matters most to you when choosing a mobile money transfer service? Tune in every day on Breakfast with Rehmat and Jameel. Call, start with
3: Sinimimi Nakusho.
2: Then share your answer and you stand a chance to win 3,000 shillings credited directly into your Airtel Money wallet. Airtel Money. Move money. Worry less. On East FM.

तलत महमूद की आवाज। और अब जो आंसर दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनचेस्टर चलते हैं। भास्कर पटेल, ग्रीटिंग्स फ्रॉम मैनचेस्टर टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लिसनिंग टू ईस्ट एफएम। बहुत शुक्रिया भास्कर पटेल। और अब देखते हैं कि किसने, सना काना आपने कहा है कुड बी चाइना, नो चाइना नहीं है। और आशा भीमानी क्या कहती हैं, ऑफ कोर्स शी वुड बी राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाविनी पटेल, व्हाट अ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग टू हियर योर लवली वॉइस ऑफ परवीन जी एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, कीप इट अप, योर लिसनर्स आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू भाविनी, अर्ली इन द मॉर्निंग इतने इंस्पायरिंग आपकी ग्रीटिंग्स होती हैं बहुत। आंसर था जापान। समिन, जापान में अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो उसके मिलने के होते हैं चांसेस। केन्या में अगर कुछ चीज़ खो जाए, आप मुझे बता दें कि आपको मिलने के क्या मौके हैं, चांसेस क्या हैं कि आपको वापस मिल जाएगी आपकी वॉलेट हो या मोबाइल हो। खैर, अब आगे जी, यासर आपने भी आंसर करेक्ट दिया है। आई टेस्टिफाई टू दिस एज आई हैव practically experienced the community instilled honesty and civic responsibility. Civic responsibility of Japanese people. कहते हैं मैंने खुद देखा है, मेरा अनुभव है। मतलब आप जापान में या तो रहे हैं यहाँ, या आपने कुछ दिन वहाँ गुजारे होंगे। आप कहते हैं कि मैंने खुद देखा है। बहुत सही आपने कहा।

0: और समय लोगों ने लिसनर्स ने कहा है कि केन्या में कोई चीज खो जाए या चोरी हो जाए तो कितने चांसेस हैं कि आपको मिल जाएंगे, सब ने कहा है जीरो, लेकिन हमारी एक लिसनर है उन्होंने दो वाक्यात आपको सुनाने हैं कि केन्या में क्या हो सकता है। जी आरफा फ्रॉम उंगा तरुंगाई।
1: Parveen, I was in a matatu one day and my handbag got pickpocketed, my wallet.
0: Achha,
1: just my wallet with money and ID card.
0: Okay.
1: And I never saw the wallet again. Like, you know, my name is Arfa Muhammad Yaqub.
0: Yeah.
1: And I was near Muslim girls' school where it got pickpocketed. The pickpocket threw my ID card inside the gate of Muslim girls' school. And from there, people who knew me, they called me and I got my ID back.
0: Look at that. What an intelligent pickpocket.
1: And then one day near Jamhuri High School ka wahan roundabout hota tha na.
0: Ji ji.
1: Uske aage na ek matatu cars was not getting away from my front of my car and I wanted to go to Limuru Road. So these people, you know, I had to stop my car. My window was open like 2 inches from the top.
0: Okay.
1: Kisi ne haath dala, unlock kiya, sab darwaze khul gaye na.
0: Okay.
1: To gaari mein aa gaye teen log, churi mere galle par rakh ke mera handbag le gaye. Okay, fir wo aage se haath gaya. Mere bag mein admission fees thi for hospital for somebody in cash.
0: Okay.
1: Le gaye. Okay, ek hafte baad mujhe post office mein mera driving license, mera ID card, mere sab important documents
0: post
1: karke mujhe post office mein mile.
0: This is
1: nuksan to hua paise ka, lekin documents mere sare unhone mujhe post kiya kyunki mere bag mein information thi my postal address ki.
0: Isliye main kehti hu na ki chor koi bura nahi hota.
1: कोई मजबूरी होगी, वो
0: कोई मजबूरी होगी
1: इसको किस चीज की तकलीफ।
0: एंड देन ही पोस्टेड,
1: वो मुझे पोस्ट बॉक्स में मिला।
0: वंडरफुल।
1: ये केन्या में हुआ है। वैसे तो मैं कहती हूँ केन्या में यूजुअली इट्स 0%, लेकिन विद गॉड्स ग्रेस
0: दिस इज व्हाट हैपेंड।
1: या इट्स गॉड्स ग्रेस, नथिंग एल्स।
0: वंडरफुल, क्या बात है आल्फा, थैंक यू। समीन, आपने देखा कि चोर ने उसका पासपोर्ट, उसकी आईडी पोस्ट की, और समीन कोई सस्ता नहीं होगा, उसको पैसे लगाने होंगे, तो लेकिन उस वो कहती हैं कि मिल गए, और जो मुस्लिम गर्ल्स स्कूल के बाहर उसका आईडी फेंक दिया गया, ये मुस्लिम है, यहाँ से उसे मिल भी जाएगा। व्हाट एक्चुअली, कितनी इंटेलिजेंस उसने इस्तेमाल की नाम देख करके, ये स्कूल है यहाँ तो कोई ना कोई इसको जानता ही होगा। ब्यूटीफुल। दीपक, आपने कहा है जापान, इन जापान यू विल गेट योर लॉस्ट आइटम्स, ऑल्सो इन दुबई कहती यू विल गेट योर लॉस्ट आइटम, इन केन्या यू विल इवन लूज योर आइटम्स वट एवर यू हैव। ओके, बहुत खूब। और दर्शन सिंह।
2: प्रवीण जी, सलाम, नया हफ्ता सबको मुबारक हो। कल हमारी लड़की नन्नी, उसका नाम करमदीप कौर है, और हमारा जवाई जो है वो है नीटू, उसका नाम तो वैसे जितेंद्र सिंह बमरा है, उनकी कल वेडिंग एनिवर्सरी थी। हमने भी उनको ग्रीटिंग भेजी है, और दिल करता है कि वो सुने कि हमने अपने दिल से उनको कितना प्यार करते हैं, और ऊपर वाला वह गुरु सबको सुख रखे और ऐसी यूनिवर्सिटीज आती रहे और सबको खुश करती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दर्शन लोटे एंड सजीत लोटे।
0: क्या बात है मिसेज एंड मिस्टर मिसेज दर्शन सिंह लोटे, अपनी बेटी करमजीत कौर को वेडिंग एनिवर्सरी नीतू और करमजीत कौर को मुबारक भेजते हैं हमारी तरफ से भी। बीत गई है लेकिन उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा दिन गुजारा होगा। एमएल विश्वकर्मा कहते हैं शुभ प्रभात, और बिहेवियर इज अ मिरर इन विच द डिफरेंस बिटवीन ईगो and values is reflected. Kya baat hai, bahut acche. The difference between ego and values. Acha, Yasir ne kuch bataya hai, likha hai, mujhe kyunki khabron ka samay ho gaya hai,
3: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix. East FM, Kenya's premier Asian mix. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gitau.
4: As the last strike enters its fifth week today, Deputy President Kithure Kindiki is calling for a speedy resolution on the stalemate. Speaking during an intergovernmental budget and economic council meeting this morning, Deputy Kindiki mandated the Council of Governors and the SRC to address the issues raised by health workers and ensure the resumption of health services.
5: Go out of their way, engage the unions and conclude that process because we don't want disruptions in this sector. And I'm grateful so far we've done so well. We have not had any disruptions in service delivery.
4: Achieving a resilient and productive population depends on active collaboration between public health institutions and communities. In a statement, Health Principal Secretary Mary Modoni has called on Kenyans to make wellness a priority through a preventive care, regular checkups, and balanced nutrition. Modoni reaffirmed the government's commitment to strengthening healthcare services while urging every citizen to support vaccination, maternal and child health, mental wellness, and healthy lifestyles. Ministry of Interior has urged young people to reject criminal activities and being hired as goons, reminding them that their futures are far more valuable. In a statement, the ministry encouraged citizens to channel their energy into legitimate, honest work and provides peace of mind, highlighting ongoing infrastructure developments including housing, modern markets and road projects. Only 17% of Kenyans prefer pharmacies for routine health screening despite their frequent use as healthcare points. A survey by Doctors for Elderly Living found that 80% prefer private hospitals and clinics, while 71% favor public health facilities to get screened. The study also recommends integrating routine screening into workplace wellness programs to improve employee well-being, reduce absenteeism, and support long-term productivity. Interior Principal Secretary Raymond Omolo's Widows Empowerment Program has reached Ruma Kaksingiri Ward in Suba South Constituency, bringing together 500 widows from 13 groups. The women engaged in discussions on empowerment, shared experience and encouraged one another on improving their livelihoods. The initiative spearheaded by Victor Yugi seeks to support widows towards greater independence, dignity and better opportunities for themselves and their families. That's the news update on East FM.
3: East FM News. East FM. Kenya's premier Asian mix. Bemisaal Andaaz with Parveen Adam.
0: Aur kehte hain Yasser, in Tanzania the chances of recovering a phone are negative. I will explain. My friend lost her phone and the thief started sending messages to friends and relatives to ask for money urgently. At the end, she discovered a loss of over $500. अच्छा ये भी अच्छी बात है कि उसने आगे शुरू कर दिए पैसे इकट्ठे करने. क्या अजीब बातें हैं.
2: नहीं नहीं उसका नाम करमजीत और है.
0: अच्छा वो आपका हो गया मैसेज दर्शन सिंह लोटे. थैंक यू. अशोक के पास चलते हैं इटली में.
6: नमस्ते प्यार वाली भटिया को और मनहर पेटर को स्पेशल गुड मॉर्निंग और सभी को प्यार भरा नमस्ते. मेरा एक सवाल है. एक गीत है ये वो पाकिस्तानी गीत है लेकिन आशिकी ने एक वही गीत है लेकिन मॉडर्न टाइप में गाया गया है. कोई मुझे गेस कर सकते हैं कौन सा गीत है. थैंक यू. चाओ.
0: थैंक यू. लेकिन अशोक आपने अल्फाज नहीं लिखे. यू कैन राइट द वर्डिंग जो गाने के हैं देन वी कैन लुक फॉर इट. और समिन केरला में क्या हुआ है. वहाँ के मुफ्ती आजम यानी ग्रैंड मुफ्ती ने बहस छेड़ दी है. कैसी बहस. उन्होंने कहा है और समिन ये बहुत बड़े मजमे में कहा है. कोई समारोह हो रहा था कि महिलाओं को घरों तक रखा जाए. पब्लिक में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है औरतों को. ख़वातीन की इज़्ज़त की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए कि इनको घरों में बंद कर दो. बाहर ना निकलें. क्यों. क्योंकि हम उनकी इज़्ज़त की सुरक्षा कर रहे हैं. शेख अबू बकर अहमद कहते हैं स्त्री पता है क्या है. स्त्री एक गहना है, ऑर्नामेंट है. इसे डब्बे में रखना चाहिए. लाजमी है इसको डब्बे में रखें. इनको बाहर लाना तबाही है. बाहर नहीं लाया जा सकता इतना कीमती जो है गहना, कहते ये किसका हुक्म है? कुरान का हुक्म है। समझना ऐसे वैसे कोई भी नहीं है हुक्म, लेकिन देखें बात कर लें और फिर बैठें, लोग बहस करें, आप जवाब देते रहें, बिजी हो जाएंगे और क्या चाहिए।

समय चोरी के वाकयात मजेदार होते हैं। यूसुफ भट्ट ने कॉल किया, कहते पता कि मैं जा रहा था टाउन और न जाने कब मेरी जेब कतरी, जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली और मेरी वॉलेट निकाल दी। मैंने बिल्कुल महसूस भी नहीं किया, कितना वो माहिर होगा। कहते हैं आगे बढ़ा हूँ, चंद मिनटों के बाद कोई मेरे पीछे भागता आ रहा है। तो मैंने मुड़ के देखा तो कहने लगा कि तेरी जेब काटी गई है और ये उसमें से तेरा वॉलेट है। कहते हैं कि होंगे 300-400 शिलिंग, उसमें और क्या था। उसने पैसे निकाल लिए हुए थे लेकिन मेरा आईडी थोड़ा एक कार्ड वगैरह अंदर रख के कहता ये ले जा अपनी वॉलेट। तो कहता है कि ओके फिर मुझे 50 शिलिंग दे दे, 50-100। तो यूसुफ भट्ट ने कहा तूने छोड़ा ही क्या है कि मैं तुझे दूं, लेकिन कहते मेरा वॉलेट मिल गया। समय हमारे मुल्क में भी वॉलेट मिलते हैं। रितु गुप्ता आपको आंसर बदलना पड़ेगा, हालांकि सब ने कहा है कि 0 चांसेस हैं। अच्छा अब देखते हैं अमीर अली राना। परवीन जी, अबाउट लूजिंग आइटम्स एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग देम बैक। लॉन्ग टाइम आई लॉस्ट माय हार्ट इन केन्या एंड सो फार आई हैवन गॉट इट बैक। ये तो नहीं मिलने वाला, ये चीज नहीं मिल सकती। अच्छा आगे जो गाना है आपके लिए

0: और सामिन देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर हैं डॉक्टर साहब. इनसे पूछे डॉक्टर साहब, आपका वीकेंड कैसा गुजरा?
1: प्रदीप जी, वीकेंड तो बहुत हिलेरियस था. अच्छा. जो मतलब कि मोमेंट एक्सपेक्ट भी नहीं की थी वो हुई है वीकेंड पे.
0: क्या हुआ?
1: अभी जो हमारे एशियन वीकली वाले हैं, जो हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं एक अवार्ड, टावा अवार्ड.
0: जी,
1: टावा अवार्ड 2026 में डॉक्टर सीमा शर्मा योगा वाले जो हैं, उन्होंने भी उनके वो भी नॉमिनेट हुए थे द बेस्ट अचीवमेंट्स इन द प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन.
0: स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन में डॉक्टर सीमा
1: जी,
0: क्या बात है.
1: उनको अवार्ड मिला है इसका. तो अभी वो अभी नशा नहीं उतर रहा हमारा.
0: कमाल है.
1: तो सारी रात हमने जाके निकाली, इतनी खुशी थी.
0: इतनी खुशी
1: कि आप
0: डॉक्टर साहब, ये
1: जो 25 साल का जो हमारा स्टगर पीरियड था यहाँ पे केन्या के अंदर, योगा को प्रमोट करने का, योगा को पीक पे लेके जाने का, उसके रिकॉग्निशन में ये सेकंड टाइम हुई है. पहले तो केन्या का इसको सीमा को पहले अवार्ड मिला था, ये द बेस्ट योगा प्रोफेशनल इन केन्या.
0: लेकिन यहाँ तो
1: पूरी कायनात जैसे मतलब हमारे कदमों में आ गया.
0: क्या बात है, क्या बात
1: है
0: डॉक्टर साहब. मैं मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि सीमा और आपने बहुत मेहनत की है इस शोबे में, योग को जो बढ़ावा दिया, तरक्की दिलाई. आपका नाम अव्वल आता है और आपकी बीवी. लेकिन बात मुझे क्यों ज्यादा अच्छी लगी है कि एक शौहर की इतनी खुशी कि उसकी बीवी को नवाजा गया है. बहुत दिल से खुश हैं आप.
1: अभी तक मेडी कर ही रही है प्रवीण जी, अभी वो पीएचडी कर रही है. तो अभी वो मतलब की आराम से ही रहती, इस साल 60 साल की एज में भी इतना योगा करना और 5-5, 6-6 लेसन रोज लेना, और वो भी एक औरत के लिए.
0: बिल्कुल.
1: तो
0: आपकी एनकरेजमेंट.
1: नहीं प्रवीण जी, आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि आप भी प्रमोट करते हो इस एफएम के थ्रू. आपको इसका क्रेडिट भी मुझसे आपको ही जाता है, और हमारे लिस्टर को, हमारे वेलविशर्स, हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब इसको नॉमिनेट किया, वोट किया, उनका अंतर दिल से धन्यवाद करते हैं.
0: बहुत अच्छे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टावा अवार्ड की बात कर रहे हैं. 70वां टावा अवार्ड हुआ और कमाल का फंक्शन, हमेशा याद रखा जाएगा. एक एक चीज सामिन वक्त पर हुई. और फिर अंजलि थकरार मरहुमा को जो ट्रिब्यूट दिया गया है इस अवार्ड फंक्शन में, कमाल का था. मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ निशा हिरानी को.
2: Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM. East FM. Asian Mix. Asian Mix.

0: जय हंगामा, हाँ भाग रही तूने।
1: काले से डर गए क्या?
2: हम काले हैं तो क्या।

बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है ये इन द वोकल्स ऑफ विशाल मिश्रा. एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट खूबसूरती, ब्यूटी, यू नो, बीइंग प्रिटी, आई थिंक दैट कम्स विद इन एज वेल. कोई अंदर से एकदम घिनौना इंसान हो और सिर्फ चेहरा खूबसूरत हो तो आई एम सॉरी, आई डोंट काउंट दैट एज खूबसूरत एट ऑल. फॉर मी द ब्यूटी ऑफ सोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ आर यू डूइंग? हैप्पी न्यू वीक. एंड येस, द वीक हैज स्टार्टेड वेरी कोल्ड. टुडे सडनली द वेदर हैज गॉन सो cold, so stay warm, be blessed and keep that company going. This is Retro to Right Now with Nilufaron East FM.

0: So Shekhar is saying that the biggest lie he tells himself is a great dancer and he can perform anywhere, and then he embarrasses himself in front of other people. I think dancing में शर्म करनी भी नहीं चाहिए. Dancing आए या ना आए, गाना सुनाए गाना, आए ना गाए, हमेशा गाना चाहिए, dance करना चाहिए. Because उसके लिए कोई special talent की ज़रूरत नहीं. आपको कौन सा India Got Talent में जाके perform करना है. You have to do it for fun, you have to do it for yourself and you have to do it to enjoy. You know, it's very important to let loose. When you dance, you let loose, you feel good, you feel happy within. So keep dancing. There's no need of lying to yourself that whatever it is. If you're feeling that you're a good dancer, you are a good dancer. When it comes to dance, I agree with you. Okay, I've got another message here, which is quite interesting by Tina. Tina, you're saying that I often lie myself when I watch series that I'll only watch one episode. This one, I'm on with you. And then you end up watching 3 or 4 episodes and sleeping late and waking up early and feeling like a zombie next morning. इसमें मैं आपके साथ शामिल हूँ. I am the same person where I lie to myself every night. Only one episode, nothing more. But then there you are watching episode के बाद episode. Okay, one more. I've got messenger saying that I'll go to gym tomorrow and I will eat right. That is the biggest lie I keep telling myself every day. I kind of agree on that as well. Thank you so much for sharing your thoughts, your messages. Okay, I've got another message here from Indy saying that last time I dazed people, thought I had fits. What's dazed people? Danced. Oh, last time I danced, people thought I had fits. But you sing well, so it makes up, right? अभी हर talent तो आपके अंदर नहीं हो सकता ना, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है. You sing amazing, I've heard you singing, I've seen you singing, so dancing में थोड़ा balance कर लेंगे, no stress Indy, okay, I'm here for you. Thank you so much. Let's get into the next hour of the show. Keep it East FM.
1: East FM. With news from Kenya, Asia and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: East FM पर 31 अगस्त की खबरें, दिन के 2 बजे पहले खबरों की सुर्खियां. शाह की महाना कंट्रीब्यूशंस पर बयान, नर्सों की हड़ताल 5वें हफ्ते में दाखिल, अमेरिकी फौज का होर्मुज स्ट्रेट पे नया हमला और वेस्ट बैंक में गैर कानूनी कब्जों का सिलसिला जारी. खबरें तफसील से. स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने उस तजवीज़ को रद्द कर दिया है कि शाह की कंट्रीब्यूशन हर महीने 9 नहीं 25 तारीख को अदा की जाए. हेल्थ के मुशीर अडन डवाले ने खबरदार किया कि कानूनी मसला खड़ा हो जाएगा, शाह के नियमों को बदलना पड़ेगा. और काउंसिल ऑफ गवर्नर्स ने नर्सों की हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया है कि ये काम पे आएं वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. 5 हफ्तों से नर्सें हड़ताल पर हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग समझौते को लेकर. आलमी खबरें. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर एक जजीरे पे अमरीकी फौज ने हमले किए हैं. 2 रॉकेट लॉन्चर्स पे फिजाई वार में 2 की मौत हो गई. ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सख्त जवाब देने का ऐलान किया है. अमरीका के मुताबिक ईरान की सुरंगें बिछाने की सलाहियत का खात्मा मकसद था हमले का. इसराइल में गैर कानूनी तौर पर फलस्तीनियों के इलाके में रहने वालों ने एक देहात पे धावा बोल दिया. एक मकान को मालिक समेत कब्जे में ले लिया. किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई वेस्ट बैंक में. जैम्बिया के मुखालफी लीडर ब्रायन मुंडुबीले को हिरासत में लिया गया है. आप पे गद्दारी के आरोप लगे हैं. विरोधी दल के नेता के घर पर छापा पड़ा जिसके बाद आप लापता थे. मुंडुबीले के 17 साथियों पर साजिश के इल्ज़ाम लगाए गए. 13 अगस्त के चुनाव में सदर हिचिलेमा को 60 और मुंडुबीले को 38% वोट मिले. ऑपोजिशन ने एतराज किया जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने छापे मारे. मुसाफिरों से भरी कश्ती शमाली साइप्रस के समंदर में डूब गई. 8 के मरने की खबर है. 23 लापता मुसाफिरों की तलाश हो रही है. कश्ती के कप्तान और 7 के अमले को गिरफ्तार कर लिया गया है. और नेपाल के एक हेडमास्टर ने 900 बच्चों को जान बचाई तूफान से पहले. राजेंद्र दावड़ी ने तूफानी रिले से 10 मिनट पहले स्कूल के 1600 छात्रों को ऊंची जमीन पर चढ़ने का हुक्म देकर कई बसों में भरा और इलाके से निकल गए। नेपाल में आए तूफान ने मुल्क के कई इलाकों को तबाह कर दिया, 4,000 जाने जा चुकी हैं। ये थी आज की खबरें, मैं हूं परवीन आदम।
1: We're deep in the groove now. Retro feels blending perfectly with today's hottest hits. This is Retro to Right Now with Niloufar.
0: Loji, we are already in the second hour of the show and I'm starting off with our Desi girl who is one, she's like a whole bundle of talent. Priyanka Chopra, I've got Kumar Sanu, I've got Jazim Sharma, Sunidhi Chauhan, Arijit Singh, B. Prak, jaise wonderful artists lined up just for you.

0: सिर्फ दिल टूटा है, सांस नहीं, धड़कनों में रवानी अभी बाकी है। प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है।
1: ये दिल तोड़ के
2: 90s Car Rewind।

0: Kenya's premier Asian mix. Asian mix. East FM.
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहरा

तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिरना।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।